0: प्रसाद दिया पवकारी नानक निधि खेप हमारी
1: करो संत मीत सावधान एकाग्र कीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गण नाम जिस मन बसा सो होत।

सीधा मांगो कि हमरा खुशी करे नित जीव पनिया साधन अनाज मंगो सत सीखा गौ भैंस मंगो नवेरी दुख ताजन तुरी चंगे।

कालमस्तम निर्कालमस्तम कूते नमस्तम दूते नमस्तम कर्मे नमस्तम भावे नमस्तम निर्देशे नमस्तम निर्देशे नमस्तम नामे नमस्तम निर्काम्य नमस्तम निर्धाते नमस्तम निर्काते नमस्तम निर्कूते नमस्तम भूते नमस्तम लोके नमस्तम शोके नमस्तम निर्ताते नमस्तम ताते नमस्तम प्रमाणे नमस्तम निधाने नमस्तम गाहे नमस्तम बाहे नमस्तम सभागे नमस्तम तरगे नमस्तम तर्भोगे नमस्तम सुजोगे नमस्तम रंगे नमस्तम भंगे नमस्तम गम्ये नमस्तस्तरमे नमस्तम जलाश्रे नमस्तम निराश्रे नमस्तम जाते नमस्तम ताते नमस्तम मजबे नमस्तजे देशम देशे नमस्तम देशे नमस्तम निर्दामे नमस्तम निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व कूपे नमो सर्व तापे नमो सर्व तापे नमो सर्व काले नमो सर्व काले नमस्तस्त देवा नमस्तम अपेवा नमस्तम जानवे नमस्तम सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व कौमे नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तम वर्णे नमस्तम मरणे नमस्तम जरारम नमस्तम कृतारम नमो सर्व तंदे नमो सतबंदे नमस्तम साके नमस्तम वाक्य नमस्तम रीमे नमस्तम करीमे नमस्तम अनंते नमस्तम महंते नमस्तस्तराके नमस्तम सुहागे नमो सर्व शोकं नमो सर्व तोकं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी शांता प्रसाद रूप है रूप है नू है पू है नेक है पेक है नाम है काम है ते है ये है अजीत है पीत है प्रमाण है निदान है प्रवर्ग है सर्ग है नील है नाद है जे है जाग है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है अगंज है भंज है दूज है जंज है मीक है रकीक है धंध है बंध है निर्बूज है सूज है अकाल है जाल है लाह है जाह है अनंत है महंत है लीक है निरसरीक है निर्लंब है संभ है गम है जम है भूत है सूत है लोक है शोक है कर्म है पर्म है अजीत है पीत है वाह है गा है मान है निदान है नेक है प्रेत है भुजंग पर्याक्षण नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेव्य नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी नाथे न संगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नाम की महिमा संत हृदय बसे संत प्रताप दुर्द सब नसे संत का संदूर का गीता ये।